हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5:50 हुए हैं। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की

हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6 पर। सुबह के 5:56 हुए हैं। लीजिए एक प्रस्तुत है एक संक्षिप्त रूपरेखा अब से लेकर दिन भर प्रसारित होने वाले एफएम रेनबो के कार्यक्रमों की।

अब से कुछ देर बाद यानी सुबह के 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके ठीक बाद नूपुर कुलश्रेष्ठ होंगी हमारे साथ स्टूडियो में लेकर कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें आज सबसे पहले आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सत्यवचन, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर। इसमें हम आपको बता दें कि एक बार फिर से ताज़ा गतिविधियों पर हम लेंगे जानकारी, किसी खास दिन की बात करेंगे गुड मॉर्निंग NCR में। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

एनसीआर एक बार फिर से स्वागत करेगा नूपुर कुलश्रेष्ठ का आपकी तरफ से आपके जाने सुबह के 8:02 से। इसके बाद ज्योति आनंद होंगे हमारे साथ, आपके साथ एक बार फिर से कार्यक्रम होगा दिल के तराने, गाने नए पुराने, लेटेस्ट बॉलीवुड म्यूजिक पर आधारित। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 9:02 से ज्योति।

रेल्स सुबह 11:02 से। वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारा एक और कार्यक्रम होगा प्ले इट कूल, जिसे आकांक्षा मोहन लेकर आएंगी 12:02 से दोपहर को। रंजन अरनेजा, जैसा कि मैंने बताया, एक बार फिर से हाजिर होंगे मेरा वाला सॉन्ग के साथ दोपहर 1:02 से।

परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने संबंधी विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की खबर है। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। जापान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। 62 लोग घायल हुए हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मारे गए प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने इस पर चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो के सफर में। आप सुन रहे हैं सुप्रभात और मैं हूं आपके साथ नूपुर कुलश्रेष्ठ। हर एक नई सुबह अपने आप में नए सपने लेकर आती है, उन सपनों को पूरा करने की पूरी उम्मीद के साथ आती है। एक नया उजाला, एक नया सवेरा और ये उम्मीद कि हाँ, जो सपने हैं, जो तय लक्ष्य है, वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचेंगे और वो सारे सपने जो आपने देखे हैं वो यकीनन पूरे होंगे। और वो तभी पूरे होंगे जब आप हकीकत के समुंदर में गोते लगाएंगे, उठ जाएंगे और उठकर फिर अपने जो सपनों के लिए, उनको पूरा करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं ना, वो सब आप करना शुरू करेंगे। तो सब कुछ आप शुरू करें और सारे सपने आपके हकीकत में बदलें, ये बिल्कुल दुआ है हमारी। और इसी दुआ के साथ एक बार फिर से मैं आपको, आप सभी का स्वागत कर रही हूँ आकाशवाणी रेनबो के सफर में। आप सुन रहे हैं सुप्रभात और मैं हूँ आपके साथ नूपुर कुलश्रेष्ठ। और साथ ही साथ एक बात कि जब हम बढ़ते हैं ना आगे अपने सफर में और अपने सपनों को पूरी करने की दिशा में, तो कई चुनौतियां आती हैं। तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि आप बस हमेशा सकारात्मक रहें, चाहे कितनी भी, कैसी भी परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आए। और अभी हम फिलहाल एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए क्योंकि उसके बाद होगी बातें सुप्रभात के इसी सफर में ढेर सारी। अभी वक्त है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सत्य वचन का।
1: This program is sponsored by SR Media Academy.
2: दोस्तों, अपने वादे के अनुसार हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि हम सब मिट्टी से बनी ईश्वर की

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि मनुष्य सर्वदा अपने लाभ की चिंता करता है और इसीलिए जल्दी शैतान के बहकावे में आकर गुनाहों में गिर जाता है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अगर मनुष्य परमेश्वर के वचन को थामे रहे और उसका अनुसरण करता रहे तो परमेश्वर सदा सदा उसकी हिफाजत करता रहेगा और अपनी आशीषों से

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि मनुष्य खाली हाथ इस संसार में आया है और खाली हाथ ही चला जाएगा। ये धन दौलत मान सम्मान सब यहीं छूट जाएंगे। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि व्यर्थ की बातों में रहकर अपने जीवन के दिनों को मत गवाओ, बल्कि अपने परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हुए उसके नाम को ऊंचा करते रहो, ताकि उसका प्रतिफल तुम

उसके धर्म और राज्य की खोज करना होगा। अपने आप को धन दौलत के पीछे भागने से बचाना होगा, क्योंकि यही सत्य वचन है कि जो मनुष्य दो नावों पर पैर रखता है वो अपने जीवन को जोखिम में डालता है। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल यानी शुक्रवार सुबह 6:00

एहसास से कि जिसके लिए उसने सब कुछ किया, वही उसे समझ नहीं पाया। तो जब आप खुद को समझ ले लेते हैं ना, जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब आप यकीन मानिए कि आपको कोई भी कुछ भी कमज़ोर नहीं कर सकता। तो खुद को समझने के सफ़र पे आपने शुरुआत की है।

तो क्या हुआ कि अगर आप इस सफर पे अकेले हैं और किसी का साथ था और अब साथ नहीं है, तो क्या हुआ? तकलीफ हुई, दिल बेचैन हो उठा, आप परेशान हो गए और ऐसा लगा कि सब अब खत्म हो गया है ना, कुछ आगे दिख ही नहीं रहा है, रास्ता बिल्कुल जितने सपने बुने थे, जो सोचा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन इसको हम दूसरी तरह से भी ले सकते हैं, है ना? तो कहते हैं ना कि हर बार हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, हम क्या चूज़ करते हैं ये मैटर करता है। कभी भी कुछ भी जीवन में किसी भी वक्त हो सकता है और हर तरह से हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होता है। तो

चाहूंगी इस कार्यक्रम में भी आपके साथ और आशियाना में आपके साथ जुड़ेंगी गीतिका उनियाल। आप सुनेंगे ये कार्यक्रम 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, और उसके बाद रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम आप सुनेंगे 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। आज का टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन। उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एक बेहद ख़ास प्रोग्राम में संदेश टू सोल्जर्स, और इसमें आपके साथ होंगी गीतिका उनियाल। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं आप हैं कर्नल शैलेंद्र प्रताप सिंह, रिटायर्ड ऑफिसर इंडियन आर्मी। सिटी की खबरों के साथ एक बार आपके साथ जुड़ेंगी मीना जैन, और आप सुनेंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। और उसके बाद इस समय है मैसेज मसाला मिक्स का, इसमें आपके साथ होंगी रमा यादव, और उसके बाद आप सुनेंगे

हुई। 62 लोग घायल, कई अब भी लापता। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मारे गए प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। केरल के कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों में आज अत्यधिक तेज बारिश होने की संभावना है। आज इन जिलों में बारिश का ऑरेंज जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

ऐसे कैसे ऐसे की ज्योति आ चुकी है लेकर आपके लिए शो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर। 7:07 हो चुके हैं और ऐसे कैसे चलेगा काम भाई, इतनी गर्मी पड़ रही है दिल्ली एनसीआर में। अभी यहाँ पर मेरे आसपास अच्छी खासी धूप खिली है और उमस की तो बस बात ही मत पूछिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल सांस नहीं आ रही है, ऐसा मौसम हो रहा है ना। मगर हाँ, मौसम विभाग ने आज के लिए भी ये संभावना जताई है कि हल्की से मध्यम बारिश तो आज होगी दिल्ली एनसीआर में, और दोपहर तक ये आपको जो है ना थोड़ा सा आंधी तूफान भी आपको फील हो सकता है, आ सकता है। तो बस ये बताना हमारा काम है कि क्या हो सकता है आज, ताकि अपना ख्याल हम रखें। और अगर ऐसा कुछ मौसम बिगड़ता है तो घर के अंदर रहें। और टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम। बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो, आपके अंदर का टेम्परमेंट, आपके अंदर का मौसम एकदम अच्छा होना चाहिए। सुनते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद मी ज्योति।

कहाँ क्या हुआ था। आज का दिन है 30 जुलाई और आज के दिन अलग अलग जगहों पे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ईयर्स में बहुत ऐसी खास बातें हुई थी। तो शुरुआत करते हैं 1886 में भारत की पहली महिला विधायक, प्रसिद्ध चिकित्सक और समाज सुधारक डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी का जन्म हुआ था। 1930 में उरुग्वे ने मोंटेवीडियो में अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर पहला फीफा विश्व कप जीता था। 1932 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में 10वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। 1956 में इन कॉड वी ट्रस्ट को अमेरिका का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बनाया गया था। 2003 में मैक्सिको में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात पिरामिड्स में से एक की खोज की गई थी और उसकी घोषणा हुई थी। 2007 में चीनी वैज्ञानिकों ने झेंगझाओ में लगभग

वेलकम बैक लिसनर्स, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में ज्योति आपके साथ है और समय फिर से मिला सकते हैं 7:20। और जो नए लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं फिर से स्वागत करती हूं और आपके मैसेजेस भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से।

में ही अब भारतीय मजबूत दावेदारी ठोकने में सक्षम दिख रहे हैं, तो तैराकी और बोल्स में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की कोशिशें जारी हैं और पैरा खिलाड़ियों के जज्बे को तो सलाम है हमेशा ही। राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2026 का सातवां दिन और सारे विवरण के साथ उपस्थित हैं हम। भारत के बेस्ट लॉन्ग जंपर शिशंकर मुरली की कहानी साहस, संकल्प और इच्छा शक्ति की एक मिसाल है। 1.5 साल पहले जिसका करियर खत्म होने के कगार पे था, वो 74 देशों के खेल मेले में अपनी स्पर्धा में भारत के लिए अपना लगातार दूसरा रजत पदक ले आया 8.09 मीटर की कूद के साथ। अपने दूसरे प्रयास में ही उन्होंने ये दूरी नापी। इसके बाद के 2 प्रयास फाउल हो गए और अंतिम प्रयास में स्वर्ण पदक पाने के लिए उन्हें कम से कम 8.15 मीटर की दूरी पार करनी थी, लेकिन उसे वो नहीं कर सके। अपनी दौड़ से पहले अपने खास अंदाज में खुद में जोश भरने के लिए उन्होंने समर्थकों को इशारा किया ताली बजाने का और कूद की शुरुआत की। केरल के

0: वो में निधि रानी और सीमा होंगी मैदान पर। 5000 मीटर में पारुल चौधरी पदक की खोज में ट्रैक पर उतरेंगी।
1: यू विल गेट टू विटनेस पैरा ट्रैक साइकिलिंग इन विच वुमेन C4 C5 4000 मीटर्स इंडिविजुअल परसूट इवेंट विल बी हेल्ड। लीशा दास फ्रॉम इंडिया विल बी टेकिंग पार्ट इन द क्वालिफाइंग राउंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया। इन ट्रैक साइकिलिंग मेन्स टीम स्प्रिंट इवेंट विल बी कंडक्टेड इन विच रोजीत सिंह यांगलिम, डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह, जेम्स सिंह विल बी पार्टिसिपेटिंग। इन वेट लिफ्टिंग यू विल गेट टू विटनेस वुमेन्स 86 kg plus category event in which Martina Devi Maibam will be representing India in the final round. In para track cycling women's C4 C5 4000 meters individual pursuit event, Lisha Das who is representing India. In track cycling men's team sprint event, these athletes include Rojit Singh, David Beckham, Ronaldo Singh and Jemsh Singh. In weightlifting men's 110 kg category event shall also be happening in which Lovepreet Singh from India will be representing our country in the finals.

वेलकम बैक लिसनर्स, आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं और 7:56 हो चुके हैं, बस जाने का समय नज़दीक है और आपके साथ 8:02 से जुड़ेंगे नूपुर लेकर गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर का ही सेकेंड आवर विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एंड लॉट्स ऑफ म्यूजिक। और चलते चलते आपको बता दूं कि आज जयंती है मुथु लक्ष्मी रेड्डी की। और क्यों खास है ये? पहली बात तो ये भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता थी और भारत की प्रथम महिला विधायक थी और उनके ऊपर स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के विचारों का बड़ा प्रभाव था। उन्होंने समाज सेवा में महिलाओं और बच्चों के कल्याण की अनेक योजनाएं

उसके लिए उन्हें याद किया जाता है, जाने जाते हैं, और भारत सरकार ने उन्हें इस देश में उनकी सेवाओं के लिए चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो ये जो खास शख्सियत हैं जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं, उन्हें हम याद करते हैं, उनके योगदान के लिए उनको नमन करते हैं, क्योंकि ऐसे ही बहुत लोगों के योगदान की वजह से आज हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा और मिलूंगी आपसे 9 बजे लेकर शो दिल के तराने, गाने नए पुराने। तो बस ये लास्ट सॉन्ग आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। धीमे धीमे बढ़ते रहिए, रुकिए मत जिंदगी में, क्योंकि जब तक जिंदगी है सांसें हैं तो हम कैसे रुक सकते हैं। कीप एंजॉइंग आकाशवाणी रेनबो, मिलती हूँ आपसे 9 बजे तो बनाए।

में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। जापान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई, 62 लोग घायल, कई अब भी लापता। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मारे गए प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। केरल में कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों में आज अत्यधिक

जी हाँ, अगर मन उदास हो तो आप भी कुछ तो गुनगुना सकते हैं, और वो गाना ज़रूर गुनगुनाइएगा जो आपके दिल के बेहद करीब हो। अब ऐसा ना हो कि आप बस चले जाएं कि मन अच्छा करना है और आप गुनगुनाने लगे वो गीत जो फिर से आपको यादों में ले जाए। तो यादें अगर खुश रहने के लिए आपको बदलना है अपना मूड, तो फिर हैप्पी सॉन्ग सुनना चाहिए, है ना? तो इसलिए

जी हाँ, सावन का ये जो महीना है इसकी शुरुआत हो गई है। और तो सावन का ये जो महीना है, और इतना खूबसूरत सा ये महीना है, झमाझम बारिश और

से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं।

हर मुश्किल का समाधान करने का हुनर तो आप रखते हैं, और बिल्कुल इस हुनर को बरकरार रखिएगा। ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए और आगे चलते रहने के लिए। और ये मुश्किल भी आपके सफ़र में बिल्कुल ना आए, इसलिए मैं आपको बिल्कुल अलर्ट कर देती हूँ, अपडेट कर देती हूँ कि सिर्फ अभी 2 दिन बचे हैं और आप इन 2 दिन में इस काम को कर लीजिए। अगर आप DTC बस से ट्रैवल करते हैं तो आप अपना जो पिंक सहेली कार्ड है उसे बनवा लीजिए, क्योंकि 1 अगस्त से आपको इस कार्ड को दिखाना होगा। और अगर आप जो मुफ्त सफ़र की सुविधा है उसको

10 अगस्त है और ये जो सेशन है वो है 2026 और 27 और सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से 49 डिस्टेंस और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए ये जो एडमिशन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं एडमिशन पोर्टल पर जाकर। आपको जाना है, आपको लॉग इन करना है। जी हाँ बिल्कुल, admission.jmi.ac.in। और साथ ही साथ इस बार जो है दो नए जो कोर्सेज हैं वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ओर से इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन बायो साइंसेज और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो प्रोसेस है वो भी अलग होगा। किसी में आपका बिल्कुल आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और अगर हम बात करें तो कई मेरिट के आधार पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये जो सारी जानकारी है वो आप यहाँ पर जाकर ले सकते हैं एडमिशन पोर्टल पर। और तो जितने भी ये जो यूजी पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स रहिए, अपडेट रखिए सारी जो ज़रूरी हैं आपके लिए कि कब कहाँ किस किस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है। और पढ़ाई तो करनी है, पढ़ना है और सफ़र में आगे यूं ही गाते गुनगुनाते बढ़ते जाना है।

है और किस तरीके से मानव का शोषण हो रहा है, किस तरीके के अपराध हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है हर लेवल पर, उनसे खुद को बिल्कुल बचाना है, अलर्ट होना है। इसलिए अवेयर रहें, जहाँ भी जाएं, बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, और उनको भी समझाएं, उनके साथ किसी बड़े का होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ छोटी छोटी बातों को जानकर समझकर चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पूरा अपना ध्यान रखें और सजग रहें, अलर्ट रहें और आगे बढ़ते रहें। जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इस सफर में, आप सुन रहे हैं सुप्रभात, माफ कीजिए, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुप्रभात का जो सफर है वो हो चुका है और एक बहुत ही खूबसूरत सा ये जो गाना है वो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, और आप जब जागे तभी सवेरा, और ये प्यारी सी सुप्रभात, हाँ गुड मॉर्निंग आप ही के लिए है, और गुड मॉर्निंग।

अब वक्त हुआ है एफएम रेनबो पर मुख्य समाचारों का। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक

व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। जापान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई, 62 लोग घायल, कई अब भी लापता। केरल में कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों में आज अत्यधिक तेज बारिश होने की संभावना है। आज इन जिलों में बारिश का ऑरेंज जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए। वहीं लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। तो ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

Hey listeners, good morning and welcome back again. दिल के तराने, गाने नए पुराने में आपका स्वागत है. और पता ही मौसम क्या कर रहा है, कभी धूप आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं. दिल्ली NCR में दोपहर तक बारिश हो जाएगी, हम मौसम को एंजॉय कर पाएंगे. मगर हाँ, उसके बाद ह्यूमिडिटी फिर से बढ़ जाएगी. मगर कोई बात नहीं, गानों के साथ और रेनबो के शोज के साथ ये हमारा आज का दिन भी बहुत खूबसूरत बीतेगा.

0: government establishment also.
1: You have been listening to a talk on India's new labor codes conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.
0: प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफी लॉन्ग टर्म होता है. एनवायरमेंटल इज वी रेड इन क्लास 8 बुक दैट एनवायरमेंटल इज एवरीथिंग अराउंड अस, इट इम्पैक्ट्स मोस्ट द पब्लिक एवरीवन. एंड व्हाट इज नीडेड इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल जस्टिस वी शुड टॉक अबाउट स्ट्रेंथनिंग द

0: आकाशवाणी।
1: हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर लवली लिसनर्स एंड म्यूजिक लवर्स। यू आर ट्यून्ड इनटू द मैचलेस म्यूजिक आर ओनली ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी रेनबो। आई एम आकांक्षा मोहन एंड हियर इज योर थर्सडे डेट विद द सॉन्ग्स दैट नेवर ग्रो ओल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट ट्रैक टुडे इज फ्रॉम द 1950s। दिस सॉन्ग has a signature doo-wop sound. A song to brighten up your morning and commute. Here is I Wonder by Diane and the Belmonts.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा

0: प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: वेलकम बैक टू द मैचलेस म्यूजिक आवर ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी रेनबो। I have a message from Pankaj from Amravati, Maharashtra, who says he loves this playlist and especially this song, Ye Dosti Hum Nahi Todenge. I know Amitabh Bachchan and Dharmendra on that motorcycle and 51.

स्टूडियो घड़ी में समय 11:05 लीजिए। पेश है आकाशवाणी रेनबो FM मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में

मातरम और राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने संबंधी विधेयक पारित। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक गुजरात के मांजलपुर सीट पर लगभग 6%, मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर लगभग 13% और बिहार के बांकीपुर सीट पर लगभग 5% मतदान। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगभग 39,000 परिवारों को छत पर सौर पैनल लगाया गया है। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। जापान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में

आज अत्यधिक तेज बारिश होने की संभावना है। आज इन जिलों में बारिश का ऑरेंज जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर की T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए। इस श्रेणी में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। वहीं लंबी कूद में मुरली श्री शंकर ने रजत पदक जीता। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और कार्यक्रम का नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स। अगर आप पहली दफा जुड़े हैं तो मोस्ट वेलकम टू द फैमिली। और हमारे इस परिवार में लाखों करोड़ों श्रोता हमें दिन से लेकर रात तक 365 दिन साल के सुनते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप दुनिया में कहीं भी घूम रहे हों, फिर रहे हों, अपने किसी भी काम के साथ समय निकाल के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे इस खास कार्यक्रम में अगर मैं बॉलीवुड ट्रेल्स की बात करूं तो फिल्मी सितारों की बातें तो होती ही हैं, और ये बातें होती हैं कि वो अपने जीवन में नया पुराना क्या कर रहे हैं, किसका बर्थडे है। और आज जैसा कि हमेशा होता है, हम एक सवाल भी पूछने जा रहे हैं थोड़ी देर में, और उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और सवाल क्या है ये मैं बता देता हूँ, सवाल थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आपको ये वाला गीत सुनवाते हैं। तो इस सॉन्ग के बाद आएगा बॉलीवुड सरताज का सवाल, तो फिर सुनते रहिए हमारे साथ, लीजिए स्वाद आकाशवाणी रेनबो का।

जी हाँ, प्रेम की नैया है राम के भरोसे। आपकी नैया किसके भरोसे है बताइए ना हमें। हमारा नंबर रहेगा 9868107070, ये व्हाट्सएप का नंबर है। और हमारा जो आज का सवाल है बॉलीवुड सरताज का, जिसे सही जवाब देके आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। तो हमारा सवाल है, हैप्पी न्यू ईयर फिल्म आई थी उसके अंदर सोनू सूद ने जो कैरेक्टर

जी हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स में। सोनू निगम का आज बर्थडे है एंड नॉट टू फॉरगेट सोनू सूद का भी जन्मदिन है। इससे जुड़ा मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, अगर उसका जवाब आप करेक्ट देते हैं तो आज हो सकता है आप बन जाएं बॉलीवुड सरताज। हमारा सवाल है हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के अंदर सोनू सूद ने जो कैरेक्टर प्ले किया था उस किरदार का नाम बताएं और मौका पाएं आज बॉलीवुड सरताज बनने का। और जो

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

हाँ, खोए हैं अभी तक, क्यों सोए हैं हमारे साथ। अगर जुड़ गए हैं तो नंबर हमारा जो दिया था उस पर मैसेज करने के लिए अभी भी समय है। नंबर एक बार फिर दोहराता हूँ, 9868 10 70 70, दैट्स 9868 10 70 70। यहाँ पर कीजिए व्हाट्सएप और हमें बताइए हैप्पी न्यू ईयर मूवी के अंदर सोनू सूद ने जो करेक्टर प्ले किया था उसका क्या नाम था, और अगर आप सही जवाब देते हैं तो किसी एक को हम चुनेंगे आज और बनाएंगे बॉलीवुड सरताज जस्ट लाइक ऑलवेज। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, और एक बात और है, आकाशवाणी के संग

मुमताज, तो बस जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत सारे सही जवाब आए हैं। इंदु अलावत कह रही हैं कि ब्रह्म मुहूर्त जैसा कुछ नहीं होता है। ये आपकी सोच है, हम उसका भी रिस्पेक्ट करते हैं। यू आर फ्री टू थिंक व्हाट यू थिंकिंग, बट व्हाट आई फेल्ट मैंने वो बात बताई, और ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, लोग मानते हैं। मैं भी नहीं मानता था। जब आपको विश्वास तब होता है जब आपके साथ कुछ ऐसा घटता है। खैर, आप सुनिए अगला गाना, इंडिया वाले फ्रॉम द मूवी हैप्पी न्यू ईयर।

0: यहाँ दुश्मन के छक्के छुड़ा दें इंडिया वाले, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमारी जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, काफी पदक जीत रहे हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के बॉलीवुड सरताज, देखते हैं कौन बने हैं हमारे साथ, कौन है। हेलो।
1: हेलो सर।
0: गुड मॉर्निंग। नमस्ते।
1: गुड मॉर्निंग। नमस्ते
0: जी, अपना नाम बताएं।

0: मुद्दे बना रहे हैं। अब नाम मिलता जुलता है ना, तो मैं मना कैसे कर सकता था। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं आपके। हमें चाहिएगा
1: पानी, पानी, पानी, पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है, तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बद

छोड़ें। गुरु रंधावा की आवाज में गाना सुन रहे हैं धमाल फोर से। अब समय ज्यादा नहीं है क्योंकि दिस मुंडा इज गोइंग टू गो आउट ऑफ द स्टूडियो और द नेक्स्ट कुड़ी इज इन द स्टूडियो। आकांक्षा मोहन आपके साथ रहेंगी विद द नेक्स्ट प्रोग्राम, आई थिंक प्लेट कूल। यस, प्लेट कूल रहेगा आपके साथ अगला कार्यक्रम। यहाँ पर रंजन को दीजिए इजाजत। सोनू सूद को एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं उनके बर्थडे की। इनकी बड़ा गजब के एक्टिंग रही इनके काफी अच्छा काम मुझे लगा हैप्पी न्यू ईयर के अंदर, जोधा अकबर मूवी के अंदर, आर राजकुमार, सिम्बा, यू नेम इट, एंड इज वर्क सो वेल इंटेंसिवली। इतना ज्यादा काम इन्होंने साउथ में इनिशियली किया था, उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड के अंदर ब्रेक किया। और क्या काम किया, सबसे बढ़िया काम तो दोस्त सोनू आपने पूरे देश का दिल तब जीता जब आपने सब लोगों की घर वापसी कराई थी कोरोना काल में। We still remember that, you are such a darling, such a sweetheart. आज का दिन आपको हो मुबारक आकाशवाणी की टीम की तरफ से। A very very happy birthday सोनू सूद। रंजन कहता है ठीक है, बाय बाय, जुड़े रहिए आकाशवाणी के संग, फिर मिलता हूँ 1 बजे के बाद।

0: Now it's time for a short break, and there is some more cool music on the other side, so stay tuned.
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: वेलकम बैक टू प्ले इट कूल हियर।

एफएम स्टूडियो खड़ी में दोपहर के 1 बज गए हैं। लीजिए पेश हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो मुख्य समाचार। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। लोकसभा ने कल इसे पारित कर दिया। नीट परीक्षा मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से आज नई दिल्ली में बातचीत कर उनकी असाधारण उपलब्धि और दृढ़ संकल्प की सराहना की। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक गुजरात के मांजलपुर सीट पर 14%, मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32% और बिहार के बांकीपुर सीट पर लगभग 12

प्रतिशत मतदान। मध्य प्रदेश में मूंग की खरीद को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन। सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच समझौता होने के बाद समाप्त। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगभग 39,000 परिवारों की छत पर सौर पैनल लगाया गया है। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष लगातार

लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट मुकाबला खेला था। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आपकी वाणी आकाशवाणी पर दोपहर के समय थर्सडे के दिन हम क्या करते हैं? आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे नहीं पता, आप बताइए। क्योंकि ये आपका अपना खास कार्यक्रम शुरू हो जाता है जहां आपकी पसंद और नापसंद का हम खास ख्याल रखते हैं। आपकी पसंद का खाना तो आप खाते ही हैं और लगे हाथ साथ साथ पसंद का गाना भी हो जाए तो क्या कहने। वैसे ही मैं सोच रहा था कि आपके गाने आप जो भी लिख के भेजें, फिल्म का नाम लिखिएगा, गाने के बोल लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा और भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा 9868107070 पर। फिर ढेर सारी बीच में बातें करते रहेंगे और कभी कभी ये भी बताया कीजिए कि वो गाना आपके दिल के इतने करीब है तो आखिर क्यों। बिकॉज सीरियसली आई डोंट नो व्हाट।

0: है वो रिंकू कुमार की है, और ये गांव खखोंडा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हमें इन्होंने मैसेज किया है। सड़क मूवी का इन्होंने गाना सुनना चाहा है, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। तो अगला गाना आपकी पसंद का हम बजाने जा रहे हैं, प्ले करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट मैं ये सोच रहा था कि टैक्स का सीज़न है, टैक्स भरने का, आपने अगर अपनी रिटर्न नहीं भरी है तो आप भर दीजिए। और कई दफ़ा मन में ख्याल आता है कि इंसान किसी की मदद करता है तो कैसे कर सकता है, वे कई तरह से कर सकते हैं आप, अदर देन एक तो अपना टैक्स भरेंगे तो आप देश की प्रगति में अपना योगदान देते हैं, उसके अलावा आप श्रम दान कर सकते हैं और किसी के लिए बहुत अच्छी संबोधन करते हैं, कोई अच्छी बात कहते हैं तो उससे उसका यू नो मोरल बूस्ट होता है, वो कर सकते हैं। मैं ऐसे ही सोच रहा था तो एक मेरे दिमाग में आया कि अगर आप पैसे से किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हैं, उसमें से एक तरीका हो सकता है शब्द दान का। भाई बोलें ऐसे शब्द जिसे सामने वाले को अच्छा लगे,
1: कहीं रहे नहीं।
0: अपनी

थैंक यू सो वेरी मच। मैं कोशिश करूंगा, कुछ एक नाम साथ साथ पढ़ता जाता हूं, क्योंकि एक मैं रिक्वेस्ट इस समय ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके बैठा हूं। फिल्म दबंग का किसी ने गाना सुनना चाहा है, नाम बता देता हूं, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, उत्तम नगर दिल्ली से रेगुलरली हमारे प्रोग्राम्स में जुड़े रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी पसंद भी, लेकिन फिलहाल जो मैंने गाना अपने कंप्यूटर जी से डिमांड किया आपकी रिक्वेस्ट पे, वो कंप्यूटर जी ने हमारे सामने पेश किया और वो गाना कोई और नहीं है, वो है प्रजापति राज साहब की पसंद का। और ये लिख रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, पटना से हैं प्रजापति राज साहब।

हैं, एक तरफ रिमझिम घिरे सावन और एक तरफ आज रपट जा, विद दैट ऑल दैट जो खुशी और जो जिस तरह की मस्ती ले रहे हैं गाने में गाते हुए, और बच्चन साहब जिस तरह से पानी में भीग भीग के नाच रहे हैं, ये आपने भी किया होगा। मैंने तो किया है भाई, मैं सही बताऊं, बचपन तो ऐसा ही अल्लड़ होता है। आप अगर बारिश में नहीं भीगे हैं, नहीं नहाए हैं, तो फिर या तो आप गाड़ी से सफ़र करते रहे हैं, या फिर क्या आप कहें, आप पानी से डरते हैं, कागज़ के तो नहीं बने। अच्छा, अगला जो मैसेज मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो है मलकापुर से अशोक कुमार आहूजा जी का। पहले तो ये बताइए, मलकापुर कहाँ पड़ता है नाम आपका? जो है, आपने जो लिखा है मलकापुर से, आपने लिखा है हमारे देश के किस कोने में है मलकापुर, मुझे बताइए बताइए, मुझे खोजना है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

वेलकम बैक आपके अपने प्यारे पसंदीदा कार्यक्रम में, मेरा वाला सॉन्ग में। मैं हूं आपके साथ रंजन, आकाशवाणी रेनबो पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप चाहें तो हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज़ ऑन एयर ऐप डाउनलोड कीजिए अपने फोन्स में और उसके बाद निश्चिंत होकर हमें सुनिए। थोड़ा सा डेटा का चार्ज लगता है, बाकी कुछ भी नहीं है। हमारे गाने, हमारी बातें आपको रिचार्ज कर सकती हैं। अब ये बताइए, आपने अपना नाम लिखा है मनमोहन सिंह, सोनम सिंह, सावन के महीने के हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्लाउड्स की इमोजी बना के हमारे पास आपने कंप्यूटर में भेज दी हैं और साथ में लिखा है कि मैंने 12:30 बजे ही मैसेज भेज दिया था। आप बड़े एडवांस हो भाई, आप मनोज सिंह हो कि मनमोहन सिंह हो? आपकी जो प्रोफाइल आईडी कह रही है वो मनोज सिंह कह रही है, तो पहले आप ये बात क्लियर कर लीजिए। या फिर दो लोग हैं या फिर एक में दो हैं, स्प्लिट पर्सन। आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ, मैं बुरा नहीं मान।

और देखिए कितना तार्किक, कितना ही सही ये गाना है। ये फिल्म तो हर दौर के अंदर ऐसी फिल्में बनती रहती हैं और ये फिल्म भी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान जो है उसकी डिमांड लगातार बढ़ती रहती है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है। इसीलिए सरकारें कहती हैं जनसंख्या कंट्रोल कीजिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट करना है तो आकाशवाणी रेनबो को बल लगातार आप सुनते रहिए, क्योंकि देखिए सीमित संसाधन होते हैं हर देश के लिए। पूरी दुनिया को अगर हम एक माने तो वी जस्ट हैव वन अर्थ, यानी हमारे पास एक ही पृथ्वी है। और हमारे पास एक मैसेज आया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैसेज है, क्योंकि इनका नाम है राहत और गज़ल। तो पहले मुझे लगा कि ये गज़ल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इनके नाम हैं। और नेहतौर बिजनौर से इन्होंने लिखा है, फिल्म है लम्हे, गाना इन्होंने जो रिक्वेस्ट किया है वो है मेघा रे मेघा।

अच्छा कुछ ऐसा ही समय बांधना है। मैं क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। देखिए जो नेक्स्ट मैसेज मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोध राज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, और फिल्म अनजाना का इन्होंने जो गीत रिक्वेस्ट किया है वो है रिमझिम के गीत सावन गाए। वाह वाह वाह वाह। तो मतलब यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू विद दिस, ये रंग यूं ही चलता रहे, बारिश यूं ही बरसती रहे, गीत यूं ही आसमान से फूलों की वर्षा की तरह आप पर आते रहें, भिगोते रहें। So this is what you want, this is what you get. यानी ये कार्यक्रम है आपकी पसंद का, जहां आपकी रिक्वेस्ट, आपकी डिमांड, आपकी कमांड काम करती है।

0: गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: पानी पानी पानी पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है। तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी ले आने वाले

नमस्कार, अब पेश है अब तक के मुख्य समाचार। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। लोकसभा ने कल इसे पारित कर दिया। नीट परीक्षा मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएसएसवी त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से आज नई दिल्ली में बातचीत कर उनकी असाधारण उपलब्धि और दृढ़ संकल्प की सराहना की। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक गुजरात के मांजलपुर सीट पर 14%, मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32% और बिहार की बांकीपुर सीट पर लगभग 12% मतदान।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज

ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। क्रिकेट खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट मुकाबला खेला था। राष्ट्रीय मंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किया। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका वन्याल और लेकर आई हूं आपके लिए आप ही का अपना प्रोग्राम जिसे आप कहते हैं आशियाना। क्योंकि आपके आशियाने में हर एक वो शख्स बहुत ज़्यादा ख़ास है जो आपको मुकम्मल बनाता है, चाहे वो आप खुद क्यों ना हो, या फिर हो आपके घर के छोटे छोटे नन्हे बच्चे या हों घर के बुज़ुर्ग। और जब घर के बुज़ुर्गों की बात आती है तो हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है। प्यार, सम्मान, दुलार और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करने की चाह हमें उनके और करीब ले आती है। तो आज की आशियाना यानी कि अक्षवट में हम एक बार फिर अपने घर के बुजुर्गों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनके बारे में बात करने में जो सुख

हमारा जीवन आसान लगता है, वरना आप खुद भी जानते हैं कि घर से बाहर निकलना, ऑफिस जाना, अपने बुजुर्ग अस्वस्थ माता पिता को घर पर छोड़कर आना कितना तकलीफदेह होता है ना। तो अगर मानसून की बात की जाए तो मानसून खुशियों की पुहार ज़रूर लेकर आती है। जब इतनी गर्मी हो रही है, कुछ बौछारें जब पड़ती हैं तो महसूस होता है कि थोड़ी देर गर्मी से निजात मिली और मिलती भी है, लेकिन उसके बाद भले ही ह्यूमिडिटी क्यों ना हो जाए लेकिन सुकून ज़रूर मिलता है। अब इस सुकून की तलाश में हम अपने घर की बालकनी में बैठते हैं, अपने पार्क में निकलते हैं, लेकिन आप जानते हैं बरसाती मौसम में किस

वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है आशियाना। और आशियाना में हम बात कर रहे हैं अपने घर के बुजुर्गों के बारे में। हमारे घर के बुजुर्ग जो बहुत ही प्यारे होते हैं, दुलारे होते हैं और जी चाहता है कि बात भर उन्हें गले लगते रहें और उनका आशीर्वाद लेते रहें। लेकिन आशीर्वाद देने के लिए भी ना हमें उन्हें स्फूर्ति से भरना होगा, और स्फूर्ति से तभी भरा जा सकता है जब उनका हम ख्याल रखेंगे। मानसून सीजन जो अपने साथ, जैसा कि मैंने कहा बार बार, कि एक बहुत खुशियां लेकर आता है, एक अलग मौसम है, पानी की फुहार जो है वो भिगो लेती है आपको, लेकिन बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। और क्योंकि हमारे जो घर के बुज़ुर्ग हैं, बढ़ती उम्र के साथ उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और बारिश का मौसम जो पानी है ये बहुत सारा इन्फेक्शियस यानी कि इन्फेक्शन भी लेकर आता है। ऐसे कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, या यूं कह लीजिए हवाओं में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगने के चांस हो जाते हैं हमारे बुज़ुर्गों को। ऐसे में ज़रूरी है कि आप

सलाम करते हैं और कहते हैं कि आप यूं ही चलते रहें और ये सफ़र यूं ही खूबसूरत बना रहे। लेकिन मौसम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इम्यूनिटी बुज़ुर्गों की वक्त के साथ कम हो जाती है और जैसे जैसे सीज़न बदलते रहते हैं इम्यूनिटी की वजह से शरीर पर गहरा असर पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, कोशिश करनी है, इस मौसम में टाइफाइड के चांस, मलेरिया के चांस, गैस की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो खान पान पर विशेष रूप से आप ध्यान रखें। कोई भी मेडिकेशन अगर आपके घर के बुजुर्गों की चल रही है तो उसे सही समय पर दें और डॉक्टर के पास रेगुलरली चेकअप ले जाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बारिश होती है, बारिश होने की वजह से गीला बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि आपके घर के बुजुर्ग कभी भी कहीं भी घर के अंदर भी ना फिसलें। वैसे तो हम हमेशा यही कहते हैं कि आपके घर के बुजुर्ग जो भी पहनते हैं, पैरों में जो भी स्लीपर्स पहनते हैं, आप सोच समझकर उनके लिए स्लीपर्स खरीद के लाएं।

0: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
1: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
0: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
1: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया। जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है।

0: चलो अच्छा अच्छा
1: लुई पास्टर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
2: वे लोग रेबीज

0: बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
1: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
0: ठीक है।
2: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए।

0: 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक

0: महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पास्टर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्टर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्टर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था।

0: हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट एम्स न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार। नमस्कार
0: दोस्तों, हमारा एक कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण के माध्यम से बचाव पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें यही बताइए कि सर्वाइकल कैंसर क्या है।
1: जी, आम भाषा में कहूँ तो सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुँह का कैंसर है, और जो बच्चेदानी का मुँह होता है उसको हम यूट्रस के बाद सर्विक्स के नाम से जानते हैं। तो

0: बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, और जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको हम यूट्रस के बाद सर्विक्स के नाम से जानते हैं, तो सर्विक्स के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और ये जो है वो मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से लेकर के 65 साल से भी ज़्यादा तक की औरतों को इन्वॉल्व कर सकता है, और इसके लक्षण जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखावट दुखने वाले होते हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है मरीज़ को, पेन हो सकता है, नीचे से गंदा पानी जैसा डिस्चार्ज हो सकता है, और इस तरह की तकलीफ़ है, और या फिर संबंध करने के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो आप बिल्कुल जागरूक हो जाइए कि ये सब जो निशान है वो सर्वाइकल कैंसर के हो सकते हैं, और इमीडिएटली आपको जो है वो हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपना एग्जामिनेशन चेकअप करा के इलाज कराना चाहिए।
1: तो इसके होने के और कोई कारण है?
0: जी, सर्वाइकल कैंसर जो है ये एक वायरस के कारण होता है जिसका पूरा नाम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, और ये HPV इन्फेक्शन के बाद काफ़ी लंबे समय तक मतलब कैंसर के सिम्टम्स जो है वो डेवलप नहीं करते हैं, तो इसका बचाव जो है हम कैंसर के लक्षण आने के बहुत पहले हम कर सकते हैं। सो अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि HPV इन्फेक्शन हो गया है तो हम सही समय पर सही इलाज कर

0: क्या काम करती है, क्या रोल रहता है इसका?
1: जैसे कि मैंने अभी बताया कि एचपीवी वैक्सीन से जो है वो एचपीवी इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाता है। तो एचपीवी वायरस के कुछ जैसे जो कैंसर वाले जो वो हैं वेरिएंट्स हैं, HPV 6, 11, 16, 18, ये कैंसर वाले वेरिएंट्स हैं, तो ये इन इन्फेक्शन को होने से रोकता है। सो अगर HPV वैक्सीन लगा दिया तो HPV इन्फेक्शन नहीं होगा, और HPV इन्फेक्शन नहीं होगा तो सेम वे सर्वा

0: कहा तो स्क्रीनिंग में क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है?
1: जी, स्क्रीनिंग के बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे कॉमन है और आज तक प्रचलित है, वो उसमें हम पैप स्मियर कहते हैं। इसमें जो पेशेंट है, मतलब औरतों को हॉस्पिटल जाना होता है और वहाँ डॉक्टर जो है पैप स्मियर टेस्टिंग करते हैं, उनके बच्चेदानी के मुंह से सैंपल लेते हैं और उसको जो है वो भेजते हैं साइटोलॉजी के लिए। और उस पैप स्मियर की रिपोर्टिंग में अगर मतलब जो भी CIN, जो कैंसर के पहले की चीज़ है, वो अगर डिटेक्ट होता है तो उसका ट्रीटमेंट तभी कर दिया जाता है ताकि सर्वाइकल कैंसर तक वो प्रोग्रेस ना करे। तो एक तो पैप स्मियर टेस्टिंग होता है। आजकल HPV टेस्टिंग जो है उसको प्राइमरी स्क्रीनिंग की तरह से यूज़ किया जाता है। तो मतलब HPV वायरस का ही टेस्टिंग हो जा रहा है। सो अगर किसी महिला में HPV टेस्टिंग पॉजिटिव आता है तो फिर उसका आगे तुरंत इलाज कर दिया जाता है। तो दोनों तरीके हैं, मतलब आप जो अवेलेबल है आप।

सकते हैं, हमारी फोन लाइंस खुली हैं, हमारा फोन नंबर है 2342108 0 8 0, 2342108 0 8 2। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन करें तो 01 लगाना ना भूलें। और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। बातें हम और भी करेंगे सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन पर, लेकिन उससे पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। ये आशा ही तो है जो हमें जीवन में कुछ करने की, कुछ इच्छाएं हमारे अंदर जागरूक रखती हैं। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण के माध्यम से बचाव।

इसके कारण आगे जा कर के जो कम्युनिटी हेल्थ में और स्कूल्स में जो बच्चों को ये वैक्सीन लगाया जा रहा है, इसके कारण आगे जा कर के उन्हें प्रेगनेंसी करने में या आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आप आश्वस्त रहें, इसके कारण कोई भी इश्यूज नहीं होते हैं, इसका माहवारी पे कोई असर नहीं होता है, इसको आगे जा कर के बच्चा करने में कोई परेशानी नहीं होती है, और इसका आगे जा कर के हेल्थ पे कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपके आपको सर्वाइकल कैंसर से बचाने का तरीका है। आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करें कि इसको लगाने से मेंसेस रुक जाएंगे या फिर बच्चा नहीं होएगा लेडी को। ये सब बिल्कुल मिथ्स हैं, ये बिल्कुल भ्रांतियां हैं जिसको कि दूर करने की ज़रूरत है, और ये प्रोग्राम इन्हीं

0: एक्सवी वैक्सीन बना है तो उसको क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है। और ये वैक्सीन, जैसा कि हमने पहले भी बात किया कि ये वैक्सीन जो है वो सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करने के तरीके हैं। सो ये एचपीवी वैक्सीनेशन से एचपीवी इन्फेक्शन को हम रोकते हैं, और ये इन्फेक्शन जो है ये सर्वाइकल कैंसर में डेवलप करता है आगे जा करके। सो अगर हम ये वैक्सीन लगाते हैं तो ये सर्वाइकल कैंसर से आपको बचाव देता है।
1: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम और डॉक्टर साहिबा को गुड आफ्टरनून मैम। आज का विषय खासकर महिलाओं को जागरूक करने के लिए ज़रूरी है। मैम क्या स्कूल स्तर पर बच्चियों को ये स्कूल में लगाया जाता है? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
0: जी, आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशंस है कि छोटी बच्चियां जो 9 साल की हो चुकी हैं उनको स्कूल में ही ये एज कम्युनिटी ड्राइव लगाया जा रहा है। सो 9 साल से 14 साल के बीच में सिंगल या डबल डोज वैक्सीन का लगा सकते हैं, और इससे सर्वाइकल कैंसर से बचने की संभावना जो है वो 95-98% प्रोटेक्शन मिलता है एचपीवी वैक्सीन से।

0: सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जो होती है वो आपको नियमित तौर पे करानी चाहिए। तो अगर पैप स्मियर करा रहे हैं तो हर 3 साल पे पैप स्मियर टेस्टिंग कराना है, जब तक कि आप 65 साल की उम्र तक ना हो जाएं। और अगर आप एचपीवी टेस्टिंग करा रहे हैं तो हर 5 साल पे आपको जो है एचपीवी टेस्टिंग कराना जरूरी है हर महिला के लिए। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि एक बार वैक्सीन लग गया तो हम अब तो हमें ना कैंसर होगा और हमें कभी भी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहते हैं ना, ये गारंटी नहीं है कि आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, बट हाँ एक उपाय है, एक तरीका है जिससे कि आप इससे बच सकते हैं।
1: एक बचाव है,
0: या बिल्कुल सही।
1: जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन फ्रॉम
0: यस
1: सर्वाइकल कैंसर। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: सतबीर सिंह सोनीपत हरियाणा से बात कर रहा हूँ मैम।
1: अच्छा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका।
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार डॉक्टर साहब
0: जी। नमस्ते नमस्ते।
2: मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, ये

0: इससे बहुत ही मिनिमल एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, थोड़ा लालपन हो सकता है, इसके अलावा कोई मेजर एडवर्स इवेंट नहीं देखा गया है। सो इससे ये बिल्कुल सेफ है और इसके कारण कोई परेशानी नहीं है और कोई खान पान में चेंज या अपने आदत में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
1: आज रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर पे, प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन पे। हम एक बार आपको अपना फ़ोन नंबर बता देते हैं कि हमारा फ़ोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन करें तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। हमारी फ़ोन लाइन्स खुली हैं, बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

0: तो डॉक्टर साहब, ये अगर जैसे कि HPV वैक्सीन की हम बात कर रहे थे, तो क्या इससे पूरी तरह ये सर्वाइकल कैंसर का खतरा हो गया, ये सब पूरी तरह खत्म हो सकता है?
1: जी, वैक्सीन एक तरीका है तो जिससे कि हम सर्वाइकल कैंसर से बचाव कर सकते हैं। तो पूरी तरह से अगर हम सर्वाइकल कैंसर मुक्त वो देश बनाना चाह रहे हैं, या फिर पूरे देश से हर देश से हम सर्वाइकल कैंसर को अगर इलिमिनेट करने की बात कहें, तो उसके लिए जो है WHO ने ऐसा गोल दिया है कि अगर 90% महिलाएं, जो 9 से 45 साल का मैं कह रही हूँ, 90% अगर महिलाएं जो हैं वो अगर HPV वैक्सीन लगवाती हैं, और अगर सिर्फ 70% महिलाएं भी अगर स्क्रीनिंग करवा लेती हैं, पैप स्मियर स्क्रीनिंग या HPV टेस्टिंग, और जिनमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है, अगर उनमें से 90% महिलाएं अगर अपना ट्रीटमेंट करा लेती हैं, तो पूरी तरह से सर्वाइकल कैंसर को विश्व से इलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये ऐसा गोल है 90-70-90 का WHO ने दिया है, जिसके कारण हम सर्वाइकल

में से हैं जिनके अर्ली एज एट इंटरकॉर्स है, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, बट इस नॉर्मल महिलाओं को भी ये HPV इन्फेक्शन हो सकता है और फिर वो डेवलप कर सकता है सर्वाइकल कैंसर्स. मैं खुद अपने डॉक्टर कम्युनिटी में ऐसे डॉक्टर्स को जानती हूँ जिन्होंने अपने हेल्थ को इग्नोर किया और बाद में जाके उनको बिल्कुल एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर हो गया, तब जा कर के डायग्नोसिस का पता चला कि वो खुद सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी. और इसका बचाव कितना एक सिंपल टेस्ट जो हम HPV वैक्सीन लगाने से कर सकते हैं या फिर एक HPV टेस्टिंग से हम इसका पता लगा सकते हैं, ये कराने से इंसान जो है वो इन एडवांस स्टेजेस से बच सकता है. तो वही है कि हर महिला को अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर नारी सशक्त है, अगर नारी स्वस्थ है तो उसकी फैमिली, उसका परिवार स्वस्थ है, अगर परिवार स्वस्थ है तो वो समाज स्वस्थ है, और अगर वो समाज स्वस्थ है तो फिर वो पूरा देश स्वस्थ है. तो हर औरत को अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, और ये वैक्सीन अगर अवेलेबल है जिससे कि इतनी बड़ी कैंसर की संभावना को हम कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो क्यों ना हम उसको टाइमली जो है वो वैक्सीन लगाएं, और क्यों ना हम 3-3 साल पे, 5-5 साल पे जाके अपना टेस्ट कराएं, ताकि हम ये पता लगा सके कि ऐसा तो नहीं कैंसर डेवलप कर गया है. जब हम जान सकते हैं कि कैंसर होने की संभावना है और उसको हम कैंसर बनने के पहले

0: ध्यान दें कि आपके खाने में ऐसा तो नहीं, बहुत बार देखा गया है कि घर की औरतें जो हैं वो सिर्फ चावल और सब्जी खा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको दाल देना चाहिए अगर वो नॉनवेज नहीं लेती हैं तो, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन डाइट भी ले सकती हैं। और वही है, हेल्दी डाइट रहना है उनका, एक्सरसाइज करते रहना है हर दिन जो है, एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। और मतलब जो सरकारी नियम है हमारा, जो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का, उसको ध्यान में रखें। अगर आप 30 साल से ज़्यादा हैं तो ज़रूर हॉस्पिटल जाएं और अपनी टेस्टिंग कराएं।
1: कई बार होता है कि महिलाएं शर्म या झिझक के कारण वो टाइम टू टाइम चेकअप नहीं करवाती, तो नियमित जांच इसके लिए भी और इसके अपार्ट भी कितनी ज़रूरी है।
0: जी, बहुत बार महिलाएं झिझक करती हैं, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए सेल्फ सैम्पलिंग मेथड्स ऑफ एचपीवी टेस्टिंग होता है। तो उसमें जो है वो सॉप स्टिक या फिर टैम्पून्स वगैरह दे दिया जाता है, जिसमें मरीज़ खुद से घर में ही अपना सैंपल ले सकता है और वो हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है।

0: मूड चाहे जैसा भी हो लेकिन एक अच्छा गीत मूड को हमेशा रिफ्रेश कर देता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे सर्वाइकल कैंसर पे प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन पर, तो यदि सर्वाइकल कैंसर का समय पर इलाज ना हो तो इसके क्या परिणाम हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकता है?
1: जी, अगर सर्वाइकल कैंसर हो गया है और इसको सही समय पे नहीं पहचाना गया और ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो ये ना किसी भी कैंसर की तरह काफ़ी तेज़ी से फैलता है, और फिर तेज़ी से फैल के ये यूट्रस, ओवरी, वजाइना, पहले तो नीचे के लोकल ऑर्गन्स, पेशाब की थैली

0: आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं, अपना चेकअप कराएं और फिर इलाज कराएं।
1: कोई एक मैसेज जो आप सभी महिलाओं और माता पिता को देंगे इसके लिए कि वो स्वस्थ रहें, जागरूक रहें?
0: जी, मतलब रिलेटेड टू सर्वाइकल कैंसर, मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये टोटली प्रिवेंटेबल कैंसर है। एक बहुत बड़ी बात है कि ये प्रिवेंटेबल कैंसर है। सो HPV वैक्सीन लगवाएं और आप इससे बच सकते हैं।
1: तो दोस्तों, आज की चर्चा से यही संदेश निकल कर आता है कि जागरूकता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है, और सही समय पर लिया गया एक फैसला जीवन भर की सुरक्षा बन सकता है। अपने परिवार की बेटियों और महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और समय पर टीकाकरण करवाएं, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं और जागरूकता का ये संदेश दूसरों तक भी पहुँचाएं। आज कार्यक्रम में हमारे

0: और ईरान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीकी सेना ने कल रात ईरान में हवाई हमले किए। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। क्रिकेट खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट मुकाबला खेला था। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए। भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ और आपके लिए हम पेश करने वाले हैं हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

नंदन वंदन अभिनंदन आप सभी दोस्तों का संदेश टू सोल्जर्स के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लाखों दिलों की धड़कन छुपी हुई है क्योंकि

सोल्जर्स के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लाखों दिलों की धड़कन छुपी हुई है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय इस कार्यक्रम को सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। ये कार्यक्रम वीरों की गाथा, उनके अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति का परिचायक है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज की मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है और अपनी कर्तव्य निष्ठा से हमेशा ही परचम लहराया है। जितने भी ऑपरेशंस में इन्होंने अपना दम खम दिखाया, वहां ये साबित कर दिया कि अपनी दक्षता से, कुशलता से किसी भी परेशानी को, किसी भी जटिल समस्या को उससे निजात पाया जा सकता है, उसे लड़ा जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। इनके तमाम ऑपरेशंस, इनके बारे में जिनमें इन्होंने हिस्सा लिया, जिनमें इन्होंने अपना साहस दिखाया, जिनमें इन्होंने अपना नेतृत्व किया,

खास तौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात की जाए उसका जिक्र हम आज करेंगे यहाँ इसी शो पर जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे इन्हें कई सम्मानों से अलंकृत किया गया। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। इन्हें 21वां राजीव गांधी ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड 2020 इससे भी सम्मानित किया। और ये पहले ऐसे डिफेंस पर्सनल हैं जिन्हें TIIFATFA 2020

0: लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो उनसे हो सकता है वो कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं, और मैं यही कह सकता हूं आई एम सो प्राउड ऑफ देम, मेरे से ज्यादा वो कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पे कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, और आपको देखकर इस वक्त ये प्रतीत भी हो रहा है कि वो जो डिसिप्लिन आप अपने कार्यकाल में सीखते हैं वो डिसिप्लिन निरंतर ही आपके साथ चलता है, और जो सेवाएं हैं वो आप में कहीं ना कहीं समाहित हो जाती हैं और आप उन्हें उम्र भर जीते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि कहाँ से ये कारवां शुरू हुआ, सबसे पहले कि जीवन का वो कौन सा मोड़ था, कौन सा पल था जहाँ आपने ये निर्णय लिया कि आपको भारतीय सेना ही ज्वाइन करना है।
0: अब ये तो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद है कि लाइक हर स्कूल में ये किस्सा है कि एक लड़की थी जिसके ऊपर हमारा भी क्रश था और उस लड़की को फौजी पसंद थे। उस समय तो हमें रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर फौजी थे, कैंटोनमेंट्स में हम रहे थे।

0: जरूर हो जाती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। जितनी भी आर्मी वाइफ्स, आर्मी मेन की वाइफ इस वक्त हमें सुन रही है ना, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू टू देम। कितनी प्यारी बात इन्होंने यहाँ पे की है कि वैसे भी जिस घर में महिलाएं हैं, जिस घर को महिलाएं सजा रही हैं, और खास तौर पर जब घर के पुरुष देश सेवा में नहीं थे, देश सेवा में तत्पर हैं और घर से दूर है, ना जाने कितने समय तक घर नहीं पहुंच पाते हैं, वो कंप्लेन नहीं करती और घर वैसे का वैसा ही चलता है जैसा कि आपने बताया कि जब घर पहुंचा तो बेटे ने जिस तरह से आपको देखा। तो इसके भी बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन एक पहलू आपके जीवन, आपके बचपन से जुड़ा हुआ। आप क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जो आपके पापा, आपके फादर खुद एक सर्विसमैन है, तो आर्मी मैन है, तो आप के लिए ये आपने बहुत देखा होगा कि इस शहर उस शहर

0: वो बच्चे जो अलग से शैतानी करते हैं, जिसकी वजह से वो रिकग्नाइज हो जाते हैं, जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं, वो बच्चे लाइफ में आगे चल के बहुत एक्सेल करते हैं।
1: नहीं, मेरे ख्याल हमारा स्कूल बड़ा इंटेलिजेंट था, हमारे प्रिंसिपल टीचर्स जो थे ना, दे वर वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया लोग थे। पता है क्यों? जो सबसे शैतान बच्चा होता था उसे स्कूल कैप्टन बना दिया जाता था।
0: अच्छा।
1: और मैं 2 साल तक स्कूल कैप्टन ही बना रहा।
0: वाह, क्या बात है, क्या
1: मतलब
0: बात है।
1: आज भी मेरे स्कूल ग्रुप में लोग यही बोलते हैं कि सर हम तो आपको सिर्फ स्कूल कैप्टन के तौर पर जानते हैं।
0: हाँ।
1: क्योंकि अब स्कूल में जैसे ही आप स्कूल कैप्टन बने तो शैतानियां कम हो गई।
0: क्या बात है, शैतानियां कम हो गई। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके सभी जितने भी दोस्त हैं ना, जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके लिए एक बहुत प्यारा सा नगमा यहाँ पर प्ले करती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और कहते हैं कि खुशी जो है दोस्तों से बढ़ती है और दोस्तों की वजह से परवान चढ़ता है। हम किसी भी उम्र में क्यों ना हो, जब भी वो दोस्त मिलते हैं तो खुशी में हमेशा इजाफा ही होता है।

0: वैसे आज स्टूडियो की खिड़की में से भी ना खुशियां ताक झांक रही हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिनकी किसे कहानियां जब आप सुनेंगे तो आप उनकी वीरता के गाथा जग जग तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें हैं जो उनसे जाननी है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना खुश मिजाज है, जिस तरह से हमारे पास संदेश भी आ रहे हैं कर्नल साहब, मैसेज यही आ रहे हैं कि आपकी खुश मिजाजी सुनकर ना सब लोग बड़े प्रफुल्लित हैं और उनको बड़ा मजा आ रहा है आपको सुनने में। तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन वो पल जिस वक्त आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, उससे पहले बहुत सारे सवाल जवाब जरूर हुए होंगे। घर पर किस तरीके का माहौल था? बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था क्या? घर से आपको ये हमेशा हिदायत दी जाती थी ज्वाइन करना है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? किस तरह से आप अपने गंतव्य तक पहुंचे, ये कहानी जरूर सुनाए।
1: मुझे लगता है कि फौजी अफसर के बेटे होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि घर में हिटलर रूल चल रहा होता है।
0: अच्छा।
1: हमारे लिए उनको हम उस समय हिटलर रूल बोलते थे कि ड्राइंग रूम में आप आ नहीं सकते, सोफे के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, चारपाई में कूद नहीं सकते, अगर डाइनिंग टेबल पर बैठना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही बैठना है, आप जब तक खाना स्टार्ट नहीं कर सकते जब सब ना आ जाएं, खाना क्लोज करना है तो जब ही करना है।

0: बॉर्डर रोड्स के और एक और लड़का था, तो हम चार थे. तो सडनली वो जो एनसीसी का था, आज भी मुझे याद है, सतीश सूद उसका नाम था, वो अंडर ऑफिसर होता था, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा फ्रेंड सिर्फ इसलिए था, नॉट बिकॉज ऑफ एनसीसी, क्योंकि मैंने एनसीसी नहीं ली थी. क्योंकि एनसीसी की सैटरडे को जब परेड हो जाती है तो चाय और समोसे मिलते हैं.
1: अच्छा.
0: तो हमारा अट्रैक्शन होता था कि चाय और समोसे मिलने चाहिए. तो वहाँ हमारा इंट्रैक्शन उससे बढ़ा और देखा कि फाइनली वो एग्ज़ाम दे रहा है. जब वो एग्ज़ाम दे रहा था, हमने कहा चलो भाई हम भी एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था कि अब ग्रेजुएशन के बाद क्या, कितना और. सो मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम को दे देने में कोई बुराई नहीं है, एंड स्पेशली बिकॉज मेरे फादर तब तक इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे और मैं अकेला रह रहा था, तो मैंने ये एग्ज़ाम दे दिया. और एग्ज़ाम देने के बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन का फाइनल डे का एग्ज़ाम दिया. उस दिन शाम को मैंने कॉरपोरेट हाउस में जस्ट लाइक दैट स्पेकुलेटिवली इंटरव्यू दे दिया. और उस इंटरव्यू में मेरे को उन्होंने थ्रू कर दिया.
1: अच्छा.
0: और उन्होंने बोला कल से आप ज्वाइन कर लीजिए. सो मतलब मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरी जॉब लग गई.
1: अरे वाह.
0: और उस जॉब के साथ ही साथ एक और खुशखबरी आई कि आपका CDS एग्जाम क्लियर हो गया है.
1: वाह.
0: तो वहां से कॉल अप लेटर

है, उसी ने कहीं ना कहीं आपको कहे थे ना ट्रू जेंटलमैन, उसी ने आपको ट्रू जेंटलमैन बनाया और उसका परिचय आज आपसे बात करते हुए मिलता है कि वो ट्रू जेंटलमैन उस बच्चे ने आपको बनाया और बच्चा आज भी जिंदा है, आपसे बात करते हुए महसूस हो रहा है। तो उस बच्चे के नाम ना ये गाना हमारी तरफ से।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी।

0: सो दैट इज अ सिकनेस. सिकनेस को अगर सिकनेस की तरह देखना है तो यस इट वॉज सिकनेस, बट मुझे लगता है मेरी रेजिमेंट की इज्जत, मेरे रेजिमेंट की डिसिप्लिन किसी हालत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती. मैं इनडिसिप्लिन हो सकता हूं, मेरा जवान हो सकता है, बट रेजिमेंट के नाम पर गलत चीज होने नहीं दूंगा.
1: जी बिल्कुल. अब बात करते हैं उस दौर की जिस दौर में आप सीडीएस आपने क्लियर किया. सीडीएस क्लियर करने के बाद घर पर बताया, पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी?
0: नहीं, पिताजी एक्चुअली बहुत ज्यादा कीन नहीं थे. क्योंकि देखिए ये जब 85, 86, 87 ये जो वो वाला दौर है जहां आर्मी में तनख्वाह बहुत कम थी, तब तक मेरा कॉर्पोरेट हाउस में ऑलरेडी जॉब लग गया. 2800 रुपए मेरे को पहली तनख्वाह वहां मिली और फौज में वापस अगर मैं ज्वाइन कर रहा था तो जीरो थी. ये तो हमारी अगेन किस्मत है कि हमें 1500 रुपए महीना वहां पर भी अलाउड हो गए, लेकिन एकेडमी के रूल्स अपने होते हैं.

0: जिस ऑपरेशन पे आपने हिस्सा लिया गौरवान्वित महसूस करते होंगे बहुत ज्यादा?
1: गौरवान्वित तो बहुत अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी।
0: अच्छा,
1: मुझे तो लगता था आर्मी चीफ जो है वो टाइम पास कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ जो काम कर रहा हूँ। मेरे लिए तो उससे बड़ी चीज, मेरे लिए कोई कमांडिंग ऑफिसर जीओसी कुछ नहीं, मुझे लगता था मैं ही हूं, मैं मतलब मैं और मेरी कंपनी, हम दो ही हैं जो दुनिया ठीक करने वाले हैं, पूरी काउंटर इंसर्जेंसी को ठीक करने वाले हैं। सो गौरवान्वित मेरे को लगता है बहुत छोटा।

0: काया को बहुत सुंदर बनाया हुआ है, आज तक वो आपको मिल गई। अच्छा, अब कारगिल युद्ध की अगर बात करें, ये आपके जीवन का शायद एक ऐसा चैप्टर जरूर रहा होगा जिसके बारे में आप बार बार जिक्र करना चाहते हैं।
1: मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करना चाहूंगा, ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है हमारे लिए। कारगिल हमने अपने इस हाथ में अपने बंदे खोए हैं। आज भी मेरे घर मेरे हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये लाल हाथ

आप मृत्यु शायद शब्द यहां पर ठीक भी नहीं, जिसके लिए देश के लिए बलिदान देना सर्वोपरि है। आई कुड सी कर्नल शैलेंद्र सिंह हैव वेट आईज। किस तरह का पल वो रहा होगा शायद शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ आपकी नम आंखें इस बात का सबूत हैं, आपके एक एक लफ्ज इस बात को यहाँ साबित कर रहे हैं कि जब एक सोल्जर एक सैनिक मैदान जंग में जाता है तो यही सोचकर जाता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं जा ही रहा हूँ देश के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए। आप और 527 टोटल 528 वो सभी सोल्जर्स, उनको हमारी ओर से नमन। हम यही कहते हैं, अगर आप नहीं तो हम नहीं।

0: टारगेट के ऊपर जब 18 गन के 18 गोले आके क्या बचेगा, तो इसलिए हम उसमें फिर से पूछते हैं, दूसरी बार पूछते हैं, चेक फायर सेफ्टी फायर, सारी चीजें ट्राई कर ली उस एक मिनट के अंदर, लेकिन फाइनली जब डिसीजन लेने की बात आई तो वो भोंपू को मैं पकड़ता हूं और मैं कह देता हूं फायर,
1: क्या
0: और वो फायर बोल

0: मेरी वाणी आकाशवाणी।
1: और आकाशवाणी में हर समय रौनक रहती है। और भाई हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल आप हमारे श्रोता हमारे साथ जो रहते हैं, बारिश हो या ना हो, रवि आए ना आए, चांद की चांदनी फीकी हो या फिर तीखी, सर्दी में कपकपाहट हो या सावन में उमस हो, आपका साथ हमेशा हमें ऊर्जा, मौज मस्ती, आनंद, बसंत का एहसास देता है। तो बस आप यूं ही देना साथ मेरा। मैं कौन, मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन।

महीने की शुरुआत कर सकते हैं और दिल से हर हर महादेव का जाप कर सकते हैं, जो हमारे प्रिय हैं और जो भक्तों के प्रिय और भक्तों का बहुत ही ध्यान रखते हैं। तो आप सभी को भी श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

0: और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

इसी जोश के साथ स्वागत करना है आपने दिल्ली में कांवड़ियों का। जी हाँ, देखिए जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है वैसे ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है, और हर वर्ष की तरह इस साल भी लाखों कांवड़िए जगह जगह से पवित्र गंगा जल अपने कांवड़ में भर कर दिल्ली पहुंचेंगे, और फिर यहां से वो जाएंगे आगे यूपी, हरियाणा और राजस्थान। तो बस इन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ बहुत स्ट्रिक्ट ट्रैफिक नियमों का पालन हमें भी करना होगा और उन्हें भी। जैसे 11 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी, तो इसको ध्यान में रखते हुए एक कोशिश की गई है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जीटी रोड, वजीराबाद रोड, विकास मार्ग, आशाराम त्यागी मार्ग, पुस्ता रोड और लोनी रोड पर हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का मूवमेंट बैन रहेगा। ये हैवी व्हीकल्स NH9 और NH44 से होते हुए अपने मंजिल की ओर उन्हें जाना होगा। अभी सिटी बसेस पर यहां पर बैन नहीं लगा है, लेकिन 9 अगस्त की शाम से 12 अगस्त की रात अप्सरा बॉर्डर से यमुना ब्रिज के बीच जीटी रोड पर रेगुलर ट्रैफिक को भी रोक दिया जाएगा। और तो और कांवड़ यात्रा के चलते जो भीड़ बहुत बढ़ जाती है, दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर आज से 14 अगस्त तक ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई गई है। ये अवधि में 52 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स चलाए जाएंगे ताकि यात्रियों को हर 8 मिनट पर नमो भारत ट्रेन मिल सके। वैसे नॉर्मली 10 मिनट के अंतराल पर उन्हें मिलती है। और तो और क्योंकि जैसा हमने बात की अभी कि वो इतनी कांवड़ लेकर आते हैं, तो मेले से हरिद्वार जाने वाले भी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ है, और उसको देखते हुए 120 अतिरिक्त ट्रेन फेरे लगाएगी। कई ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव देने और 2 नियमित मेमो ट्रेनों का हरिद्वार तक विस्तार करने का भी फैसला लिया गया है। दिल्ली जंक्शन शामली मेमो 29 जुलाई से 13 अगस्त तक दिल्ली से हरिद्वार और 30 जुलाई से 14 अगस्त तक हरिद्वार से दिल्ली के बीच पहुंचेगी। तो अब आपको पता है ना कि आपको क्या करना है। सबका सम्मान करना है, जहां तक हो सके मदद करनी है सभी की, जो कांवड़ है उनकी भी और जो यात्री सड़क पर है। और अगर

0: और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या

गई है। और ऐसे समय में ये फ्रेंडशिप डे, ये मित्रता दिवस बहुत बहुत मायने रखता है कि केवल दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं बल्कि देशों, संस्कृतियों, समुदायों, संपूर्ण मानवता के बीच एक शांति के सेतु का रूप है। हम सब लेट्स प्रे टू द गॉड कि हमें एक ऐसा दोस्त मिले कि बस ऐसा दोस्त किसी के पास ना हो जैसे हमारे पास है आप। सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्त।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो।

नमस्कार। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संसद ने मंजूरी दे दी है। आज लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया है। राज्यसभा कल ही यह विधेयक पारित कर चुकी है। राज्यसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कर दी है। यह विधेयक कल लोकसभा पारित किया जा चुका है। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। सोशल मीडिया

बिल्कुल, मेघ से तो जाने क्या क्या जुड़ा हुआ है। मेघ जब आता है तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें ले आता है ना अपने साथ, बहुत सारी यादें ले आता है। और कुछ ऐसा ही टॉपिक कल था, लेकिन मुझे

आज आपसे बातें करनी, कई बार बहुत दिनों बाद मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस बातें करते रहे। और ये इतने सारे जो मेरे प्यारे प्यारे मैसेजेस आ गए हैं, गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक सौरभ अनेजा गाजियाबाद से, थैंक यू सो मच दोस्त। सावन का माह आया, बचपन घेवर मिठाई की यादें ताज़ा हो रही हैं, रिमझिम झूलों में झूलना मस्ती की यादें, बुढ़ापे में बचपन याद आ रहा है, महिलाओं का तीज त्यौहार, कांवरियों का जल अभिषेक, पूजा संस्कारों की यादें ताज़ा हो रही हैं। अनिल शर्मा सरिता विहार से लिख रहे हैं मेरे नाम। मैं आपको बताऊं कि जब हम छोटे थे तो रहते थे पुरानी दिल्ली में, तो वहाँ एक बाग था जिसको जनाना बाग कहा जाता था, जनाना माने महिलाएं, उनका बाग। और वहाँ जाके इतना खूबसूरत था उस समय में वो अंदर से, कि वहाँ जाके हम सबसे ऊंची जो पेड़ की जो डाल होती थी ना, उस पर झूला अपना बहुत मजबूती से डाल देते थे। और क्या बताऊँ आपको कि आपसे बातें करके ना वो वाली यादें फिर से ताज़ा हो जाती है। कंचन सोनिया विहार दिल्ली से लिख रही हैं, गुड इवनिंग मैडम, कैसी हैं आप, प्रोग्राम

तो ऐसा होता है। जावेद आलम मोहम्मद जयान जयपुर से लिख रहे हैं, सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है तो मन में भी एक खुशी होती है, जैसे कि किसान अपने खेतों को देखकर झूम उठते हैं, हरे भरे खेत देखकर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नमस्ते एफएम रेनबो टीम, मैं गाजियाबाद पूजा कॉलोनी से कपिल यादव लिख रहा हूँ। सावन का महीना मुझे बहुत अच्छा लगता है, रिमझिम बारिश के बीच छत पर घूमना और आप

बिल्कुल, आप यहाँ हैं आकाशवाणी रेनबो पर और बातें कर रहे हैं हम और आप मिलकर। गुलफाम खान दिल्ली शाहदरा से लिख रहे हैं आपको मेरा आदाब। वॉल्यूम की आवाज़ 15-20 दिन से कम आ रही है, मेरे रेडियो पर भी कम आ रही है और गाड़ी के स्टूडियो में भी कम आ रही है। तो ये तो अब मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, तो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं ज़रूर बताती हूँ, इस परेशानी को हम दूर करेंगे। फिर आता है एक मैसेज प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, बरसात में परेशानियां कुछ भी आ जाए, मुझे तो भोलेनाथ के सावन सोमवार बहुत प्रिय है, हर हर महादेव। क्या बात है, ये बस हलो ही लिख रहे हैं, इससे ज़्यादा इन्होंने ना नाम लिखा ना कुछ लिखा। सावन माह शिव पूजन के बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इस माह में बारिश की अधिकता से कहीं बाढ़, कहीं बीमारी व अन्य प्रकार की जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में हमें सावधान रहना चाहिए, यात्रा पर जाते समय विशेष सावधानी बरतें, हो सके तो ऐसे मौसम में घर से बाहर कम ही निकले, अपना और अपनों का

0: है ना?
1: हाँ बिल्कुल हाँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि वो जब याद आ जाती हैं तो ऐसा लगता है कहाँ खो गई हम लोग। बचपन में कितना मिलकर जो है नाव चलाया करते थे, नाव तैरती थी ना आपकी हमारी हम सब की। और ये गाना भी कुछ ऐसा ही था ना, जग जा जग जा जग जा। गाना देखेंगे तो आपको पता चलेगा, फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत ही सेंटिमेंटल गाना लगता है मुझे ये। खैर, गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेड़ा वन गांव से। वैसे तो सावन में सभी को आनंद आता है, पर हम किसान हैं हमें ज़्यादा आता है। हमारी साल भर की फसल इसी पर निर्भर करती है। भले खेत के रास्ते खराब हो जाए, कीचड़ हो जाए, प्रकृति के साथ एकाकार होने का महीना। कितनी अच्छी बात याद दिला दी ना आपने। दिल्ली के आसपास भी बहुत सारे गाँव बचपन में हुआ करते थे, जहाँ अब मुझे लगता है फ्लैट बन गए हैं। लेकिन गांवों से हमारा रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, और गांव हमारी जान है। न्यू वन एयर ऐप में तो सही है आवाज़ आ रही है मुझे।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड
3: 1.6 आपके लिए।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है

0: है। प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं।

रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि सांसदों से दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। भारत संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धा समर्थक सुधारों की वैश्विक रैंकिंग में 25 स्थानों पर चढ़कर 82वें स्थान से 57वें स्थान पर पहुंच गया है। केरलम पुलिस ने राज्य में अवैध नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान तूफान के अंतर्गत 62 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और 58 नए मामले दर्ज किए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की गोलाबारी में 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं।

भी प्रोग्राम बनाया गया है खास आपके लिए, ताकि मिलके यहाँ पे करें रॉक। और मैं हूँ रमा, और आपके लिए ऐसे गाने चुनकर लाई हूँ जहाँ म्यूजिक भी है, मस्ती भी है और मसाला एंटरटेनमेंट तो है ही।

0: रेनबो।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है।

एक टॉल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहैबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। मानस के साथ साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे

चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं विशाल टी भी 400 मीटर दौड़ के फाइनल में पहुंच गए हैं। ताइपे ओपन बैडमिंटन में उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग, तन्वी शर्मा और किरण जॉर्ज ने सिंगल्स वर्ग के क्वार्टर फाइनल दौर में अपना स्थान पक्का कर लिया है और दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का तीसरा संस्करण कल से

अगर आपने 90s में स्कूल की शरारतें की हैं, कैसेट प्लेयर पर गाने सुने हैं, टीवी पर हर शुक्रवार चित्रहार का इंतज़ार किया है, तो ये जो सफ़र है ना,

ये फिल्म हमने देखी और मैं तुझे सजेस्ट कर रही हूँ कि ये फिल्म ज़रूर देखियो। एंड उपासना के कहने पर ही मैंने अपने पापा मम्मी भाई बहन सबको तैयार किया और हम लोग हॉल चले गए फिल्म देखने के लिए। और बहुत ही अमेजिंग फिल्म थी, बहुत ही अमेजिंग गाना इस फिल्म का, और बार बार कैसेट में हम उस गाने को सुनते थे और मैं थैंक यू कहती थी उपासना को कि एटलीस्ट तुमने चिट्ठी के ज़रिए मुझे सजेस्ट किया इस फिल्म को। सब बड़े हो गए हैं, बहुत ही जानी मानी डॉक्टर बन गई।

0: ने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक बहुत ही मशहूर जुमला है, दिल है कि मानता नहीं, हालांकि गाना भी है, पूजा भट्ट और आमिर खान पर फिल्माया हुआ। कह सकते हैं कि इंसान जो है ना, वो इमोशंस के आगे झुक जाता है, चाहे दिमाग उसे कितना भी समझाए। खैर, दिल है कि मानता नहीं, कुछ रिश्ते, कुछ यादें और कुछ एहसास वक्त के आगे बढ़ जाते हैं, मगर दिल समझ नहीं पाता, मानता नहीं और याद करता उन लम्हों को।

0: That was Wayne Shorter with the track with Children of the Night. Wayne had a remarkable way of telling stories without using a single word. And now we enter a more reflective mood with pianist McCoy Tyner. But before that, we had to take a short break. So don't go anywhere, because when you come back, we'd be with the track McCoy Tyner with the track A Loverman.
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल.
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो.
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है.
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर. इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा. जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा.
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है.
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है.
5: प्रिय उपयोगकर्ता आपका

नमस्कार, पेश है इस घंटे की खास खबरें। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दी, लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक भी पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए हमले किए, जिससे पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी

रंगे महफिल की महफिल सजी है, गजलें सुन रहे हैं आप। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दे, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना ले। अगली गजल अनुराधा पौडवाल की आवाज में आप तक पहुंचा रही हूं। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 11:15 हो गए हैं।

0: पर पहुंचा तब इन हाथों में फकत गीली रेत देखकर अपनी बदनसीबी पर थोड़ा नाज भी हुआ।
1: हाल ही में लता जी ने सजदा के नाम से एक एल्बम जगजीत सिंह की म्यूजिक डायरेक्शन में पेश की।
2: सजदा, सजदा एक ऐसा कैसेट है जो कि सजदा है गजल को, सजदा है शायरों को,

हमारे ना चाहने के बावजूद शायरों ने इन लम्हों को लफ्जों में कैद करने की बहुत ही कामयाब कोशिशें की हैं। साहिर लुधियानवी साहब कहते हैं कि अरे ओ आसमां वाले, बता इसमें बुरा क्या है, खुशी के चार झोंके कर इधर से भी गुजर जाए। लेकिन उनका क्या जो कि शाम की तन्हाई में आंख में नमी लिए बैठे हैं और कुछ गजलों को कुर्सी पर सिर टिकाए लगातार धीमी धीमी कई दफा सुनते जा रहे हैं। ऐसे हालात में जो घिरे होते हैं उनके लिए यही दुआ कि ऊपर वाला जल्द से जल्द उनकी जिंदगी में खुशी अता करे और उन्हें गम से दूर करे।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है।

मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसात अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा यह वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में यह हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा यह हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

0: रियाना का सॉन्ग हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 FM रेनबो पर बिंदास बोल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति।

0: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:03 हो चुके हैं और आइए, यह बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम का समय है, वो चला है जिसका नाम है भुलाए ना।

प्रोग्राम फार्म टू सिटी एफएम रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार एफएम रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

सरकार देश के विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक भी पारित किया। दिल्ली सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 3:16 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज मेरे यानी अर्चित के साथ।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 4 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार मेरे यानी अर्चित के साथ। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी किया, कहा सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक भी पारित किया। दिल्ली सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया

0: 4:16 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सारे गामा।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा

0: 4:45 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सारेगामा।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब को

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति बैठक की अध्यक्षता की। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए हमले किए जिससे पश्चिम एशिया संघर्ष तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुईं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बीच हुए विरोध प्रदर्शन तेज हुए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कोयला खदान में हुए विस्फोट में करीब 18 खनिकों की मौत और 24 अन्य खदान के अंदर फंसे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुष के 110 किलोग्राम वर्ग में 388 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। वहीं महिला डिस्कस थ्रो में सीमा कालीरमन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हुई। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता। दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का तीसरा संस्करण आज से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तराखंड बिहार हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।